अड़ल सुनै गोंग जो जाहे सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट ना तिन नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुन तीन कहिज भाद्रव सुधि अष्टमी रव बारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारम एत श्री

दास जान कर कृपा करहो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहब मैं किंकर थारा दास जान द हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघर प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र अचारो चूक होए कब लिहो सदारो कवियो वाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा हो जग माहे जो तेह प्रभ को त्याई है अंत सुर्ग को जाहे दोहरा हार हर जन दोई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आए इस प्रभु को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूं कहत सुनाए कब वाच दोहरा ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा

कालपुरख की देह मोह कोड़क विष्णु महेश कोड इंद्र ब्रह्मा कृते राव सास क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्गवास राग बरकरा सगरे पुरी समेत चौपाई जो ए कथा सुने अर गावै दुख पाप तै निकट न आवै विष्णु भक्त की ए पल होई आद ब्याद छुआ सके न कोई सम्मत सत्रह सहस बचावन हाड़पति प्रथम सुखदावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परे लोह लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तर स्तद्रव तीर्थ रंग श्री भागवत पूर्ण कियो राघवर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सबाद बबाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भागवत कृपा प्रसाद सवैया

नमान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवैं बहुभेद कहें हम एक न जाने हो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ सब तोहे बखाने हो दोहरा सगल द्वार को चाड़ कहे ओ तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार।

अमृत छाड़ भिख भिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवा सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर साहां दा साहो।

दुख लगे ना पाई। सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखत दिया एक कालिव लाई। रहा राख लिए दिन रखन हार, सब याद मिटाई।

ज्यो ज्यो चल चुभ दुख पावे जम काल सहसे डंडा है। हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत सोब खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक।

मन गुर मिलकात सवारे रहा। ए संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे ए रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहज हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो।

श्री वाहिगुरु एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद राम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए कारण उन्हें दे आवे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसों पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नार दा ध्यान करके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हन आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम के दीवान की संपूर्णता परंत आप जी के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है सोहेला साहब की बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या पुलजुग की खिमा बख्शना आप जी के भाणे दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया है आई रैन आप दे भाणे बतीत होवे कृपा करो आप जी अपनी सेजा ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अष्टपदी सिमर सिमर सिमर सुख पाव कर कले तन मय मिटाव सिमर जाप संभर कै नाम जप त्यागन त्यानिक वेद प्राण सिमर सुदाखर।

जय माता सुमित न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहे जय महाप्याम दूत जम दलाय त केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुस्कुल होवे अत पारी हर को नाम के नुमाय उदारी अनुपुर जन करत नहीं तर हर को नाम कोड़पा पर हराय गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पाप सुख नेरे सो सिद्ध को राजा दुखिया हर का नाम जप तो सुखिया।

दास तपि सरथी वै अग्नमय होमत परान कनक सवह भरपूम दान न्योले कर्म कर बवासन जनमार संयम साधन निमख निमख कर से घटाव तो पिह में मैल न जावे हर के नाम सम

निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मतमा लहरिया सगल उद्धम में उद्धम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाने में अमृत बाने हर को जा सुन रसन मखाने सगल

जय प्रसाद तरह पुरुषो को भस सुत प्रात मीत बनता संघसाय जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदायी पवन पाव कामला जय प्रसाद पोगा सबरसा सकल समग्री संग साथ बसा दीने हस भाव।

जय प्रसाद छियम रखा है तिसाकर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लाभ है तिसको सिमर परम गत पावन जय प्रसाद प्रसाद सुख मंदर तिसता सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमर तिस रसना।

सदाशुभ पाव सा संगत गोचर लह साधु के संग अदर सह साग संग बस थन ऊच साधु के संग महल पहुच साध के संग दृढ़ सब धर्म साग संग केवल पार ब्रह्म साग संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान साध के संग साव कुल उदार साध संग साधन मित कुटुंब निस्तार साधु के संग सुतन पावे जितन ते सबको बरसावे साध संग धर्म राय कर सेवा।

Saraswati, Mithyanai Rasna Parasa, Manma Prindan, Niranjan Darsa, Partharya Rupana Pekha Netaro, Sagatal Sansanga Heta, Karna Suna Kahu Kinanda, Savta Jane, Apasko Manda, Gurpasa Vikya Parare, Manki Basana Mante Tarai, Indre Jalpan Dogtera, Tadanan Kurmade Kuvasa, Parasa, Vasana Sojipso, Uparso Parasana, Bisanke Maya, Te Hoi Penna, कर्म करतो इन्हें कर्म तस्वासन का निर्मल धर्म का हो फल की इच्छा ने बाचा है केवल भक्त की संग राचा है

कई कोर प्रभु को खोजनते आत्मय पार ब्रह्म लहनते कई कोर दर्शन प्रप्यास तिनको मृय प्रविनाश कई कोर मांग सत्संग पार्व तिन लग रंग जिनको आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई

बिना संतोख नहीं को राज्य सुभन मनोरथ बिर सब का जय नाम रंग सर्व सुख होय बड़पागी के से प्राप्त होय करण कराम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण कराम करने हर इसके हर कहा विचार जैसे जैसे करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जोग स्वप्न।

प्रति संत के दुखन अर्जा कटाए संत के दुखन जमते नहीं छुटाए संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मरी संत के दुखन सो बाते हैं संत के दुख रखन कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा दे करे नान संसंग निंदक पितर है संत के दुखन तय मुख पावे संतन के दुखन काग ज्यों लवाए संतन के दुखन सर्व जन पाए संत के दुखन जन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संत के दुखन सब को चलाए संत के दुखन ले देते सब जाए संत के दुखन निजन चाहे संत दुखी कथा को नाय नान सुन पावे तो भी गत पाए संत के निंदक मात ताए संत के निंदक खंड न पाए संत

करने हार वरना भूज कर विचार करते कि मित्र न जाने के अनान ज्योत पाए स्वर्ती आ विष्णु विष्णु पाए विष्णु आदि बुद्धिया ते साया स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुरु के वचन विदार्थ रहे वेदाते जो काटन हार जा का संग तर संसार दिन का सेव सोवड पागे जन का संग अगले लागे जन के संग एक लिव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु

भोजनर को सब हो नान सत सब प्रभ सोए सत सुरवृद जन मान्या करम क्राम दिन मूर पछाने जाकर तब स्वा प्रभाया तत् ज्ञान तस्मान प्रगटाया पैत नृपो हो बसाना जिस तुर जा तस्माय सुमाना बस मारे बस

गुणाव सरगन पियो ही कलाता जिन सगली मोही अपने जर प्रभा अपनाए अपनी कीमत आप पाए अरबिंद हो जाना ही कोय सुरमंदर अंतर को सोय ओत बोध रवया रूप रंग पै प्रकाश साध के संग रस रचना अपनी गलता रिंद गाना।

जैसे सो को नाछ सौ सुख साधु संग प्रिय जैसो बाको करा पर ही करनी सा सो बाप।

भक्तजन के मंत्र रंग बिरला कहु पावे स्वंग एक बात जगह कर्मया गुरु प्रस्थान नाम जब लयाता कि उम्मा कहीं न जाए नान क्रिया सर्व समाये प्रभक सन दीन दयाल भगत वच सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रत पाले आद भर कारण करता भगतन के प्राण धार जो जो जप सो पुनीत भगत पाय लावे मन हित हम निर्गुण यार नीचे जान नान तुम्हारी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम करके गुण गायन कराय भोग बढ़िया यर के नाम की

पर अविनाशी सुख अपना संता जन मन को कहा बिना संजय पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह के सोए जब अभिक्त गोत्र प्रवेखा तब चित्र गुरु पूछ लेखा जब ना निरंजन गोत्र का तब कौन छुटे कौन बंधन मार दे अपना पापे चब धनान का प्रू पापी उपदा जय निर्मल पुरुख पुरुख पत होता था अवन मेर को कहते था जय निरंजन रंका निर्वाण था कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जग देता छल छत लगत को किस जय जो स्वरूप जो संग समावत

सुमान अभिमान प्रकार के अवख्यान आपन के लाव कर देखा खेल संकोच तो नानी के क्या जाय भगत आप जय पथरा पसार संत प्रताप दो पा का पे तन उनके स्वभाव नो बनी आप कौत करे आनंद चो जा पर जोग जिस पावे तसे आप न

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सती असंख दातार असंख सूर म

चारु असंख मूर खांद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे असंख

वास्तंग निरपेसे नवास्तंग निरनामे नवास्तंग निरकामे नवास्तंग निरताते नवास्तंग निरकाते नवास्तंग निरतूते नवास्तंग भूते नवास्तंग लोके नवास्तंग सोके नवास्तंग निरतापे नवास्तंग थापे नवास्तंग तिरमाने नवास्तंग दाने नवास्तंग गाहे नवास्तंग अबाहे

रहे गुरु नाले। गुरु के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले, आप छड़ सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने कोई, कहे नानक सुनो संत सो सिख सन्मुख होए।

समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। पृथ्वी सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रिया। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।

दर्शनी स्नान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे। बोलना जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले।

दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिब क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किस है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो

न जावा एक बार ज्योत दभावे साई पलिकारे तू सदा सलाम निरंकारे असंख मूर्खे अंध कोरे संख चोर राम खोर असंख अमर कर जाहे जोर संघ गलवड हत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे संख कुड़ियार कुड़े फराहे संख मलेस मल पख काहे संख निंदक सिर कर

के जिसनों बख्शे सिफत सलाहा नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वपारे अमुल वपारिये अमुल भंडारे अमुल आवे अमुल जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल तरम अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल कर्म

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गह की लाज अस गोबिंदास तुहार। सुनी अर